संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस चिन पाया थिरता का सुहाग जेह मुख बेद गायत्री निकसे सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जाके पाए जगत सब लागे स्यों को पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पाडे दोजक परह रहाओ आपन ऊंचा नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर परे चौदह चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक कूप लै कूप परे तू ब्राह्मण मैं कासीक जुलहा मोहे तुहे बराबरी कैसे के बन है हमरे राम नाम कहे उबरे बेद परोसे पांडे डूब मरहे तरवर एक अनंत डार साखा पहप पतर रस परिया एह अमृत की बाड़ी है रे तिनहार पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी रहाओ पावर एक पहपरस बीदा बारह ले और तहरिया सो रह मदे पवन चकोरिया आकाशे फर फरिया सहज सोनक बिरवा उपजया धरती जल हर सोखिया कह कबीर हो ताका सेवक जिन एह बिरवा देखिया मुंदरा मौन दया कर चोली पत्र का करो विचार रे खिंता एह तन सियो अपना नाम करो आधार रे ऐसा जोग कमाव हो जोगी जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ बुद्ध पिपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई पंच तत् लै हृदय रखो रह निराल मताड़ी कहत कबीर सुनो रे संत हो धर्म दया कर बाड़ी का कवन काज सिर जे जग पीतर जन्म कवन फल पाया पवनिद तारन तारन चिंता मन एक निमख न एह मन लाया गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिनकी प्रभ जियो पिंड धातिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी रहाओ पर तन परती निंदा पर अपवाद न छूटे आवागमन होत है फुन फुन एह पर संग न टूटे जेह कर कथा होत हर संतन इक निमख ना की नो मैं फेरा लंपट चोर दूर मतवारे तिन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मो माही दया तरम अर गुर की सेवा ए सुभनंतर नाही दीन दयाल कृपा दम कृपाल दमोदर भगत बछल पै हारी कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुमाई जेह सिमरन होए मुक्त द्वार जाहे बकुंठ नहीं संसार निरपौ कै कर जाव है कर बजाव है तूर अनहद वाजह सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाओ जह सिमरन नाही ननकार हुक्म मुक्त करे उतरे बहुपार नमस्कार कर हृदय माहे फिर तेरा आवन नाहे जह सिमरन कर है तू केल दीपक बांध तरयो बिन तेल सो दीपक अमरक संसार काम क्रोध बिख का डीले मार जह सिमरत तेरी गत होए सो सिमरन रख कंठ परोए सो सिमरन कर नहीं राख उतार राख उतार गुर प्रसादी उतरे पार जे सिमर नाही तोहे कान मंदर सो वै पंपटंबर तान सेज सुखाली बिकसै जियो सो सिमरन तू वंदन पियो जे सिमरन तेरी बा जाए बलाए जे सिमरन तुझ पोहे ना माए सिमर सिमर हर हर मन गाइए एहो सिमरन सतगुर ते पाइए सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास गिरास जाग सोए सिमर रस भाग हर सिमरन पाइए संजोग जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइए संजोग जय सिमरन नाही तुझ पार सो सिमरन राम नाम आधार कह कबीर जाका नहीं अंत तिसके आगे तंत ना मंत राम कली कर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नख सिख एह मन चीना तब अंतर मजन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत न जन्म जरा रहाओ उलटी ले सख्त संहारंग पैसी ले गगन मजारंग बेदी ले चकर पयंगा पेटी ले राय नसंगा चूकिया ले मोहे मयासा ससकीनो सूर गिरासा जब कुंभक भरपुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया सुनते सुन मन वसाया कर करता उतर सपारंग कह कबीरा सारंग चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप
ज्योति अंदर अंतर ब्रह्म अनूप कहो रे कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार ज्योति अंतर तरया पासार रहाओ हीरा देख हीरे को आदेश कहे कबीर निरंजन अलेख दुनिया हुशियार बेदार जागत मुसीयत हाओ रे पाई निगम हुशियार पहरुआ देखत जम लै जाई रहाओ नींब पयो आंब आंब पयो नींबा केला पाका चार नाली एर फल सेबर पाका मूर्ख मुग्ध गवार हर पयो खांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई कह कमीर कुल जात पद तज चींटी होए चुनक चींटी होए चुन खाई बाणी नाम देओ जियो की राम कली कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनीले कागद काटीले गुड़ी आकाश मदे परमियले पांच जना स्यों बात बतौआ चीत सडोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राज कुआर परंदरिये वस्त विनोद विचार करती है चीत सौगागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गौ चरावन छाडियले पांच कोस पर गौ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तरलो तिलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीतक वेदना गावोगो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद वेद बेन बजावोगो बैरागी राम गावोगो शब्द तीत अनाहद राता अकल कह कर जाओगो रहाओ इड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो चंद सूर दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देख जल मह पैसो जी जंत न संतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए कट ही पीतर नाओगो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो न कहावोगो नामा कह चित हर स्यो राता सुन समाद समाओगो माए न होती बाप न होता कर्म न होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोय न किसी ही केरा जैसे तारवर पंख बसेरा रहाओ चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहां ते आया खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा परण वै परम तत् है सतगुर होए लिखाया राम कली कर दूजा बानारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तौ ना पुजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाओ गंगा जाओ गोदावर जाइए कुंभ जाओ केदार नाइए गोमती सहु सहस गौदान कीजै कोट जाओ तीर्थ करे तन जौ हिवाले गारे राम नाम सर तौ न पूजै आसदान गजदान सहजा नारी भूमदान ऐसो दान नित नित है कीजै आत्म जौ निर्मायल कीजै आप बराबर कंचन दीजै राम नाम सर तौ न पूजै मने न कीजै रोस जमे न दीजै दोस निर्मल निर्वाण पत चीन लीजै जस रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद परण वै नामा तत रस अमृत पीजै राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए अनपो पाओ न दरसै लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो परस है ना परसे देव संसय गांठ न छूटे काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंच हो मिल लूटे रहाओ हम बड़ कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी गुनी ज्ञान ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एहो बुद्ध कबह न जासी कहो कबीर सब सबे नहीं समझस भूल परे जैसे

0: राम कली बाणी बेणी जियो की इक ओंकार सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना तीन बस है एक ठाई बेणी संगम तह पिराग मन मजन करे तिथाई संतो तहा निरंजन राम है गुर गम चीने बिरला कोय तहा निरंजन रमैया होय रहाओ देवस्थाने क्या निशानी तह बाजे शब्द अनाहद बाणी तह चंद न सूरज पौन न पानी साखी जागी गुरमुख जानी उपजय ज्ञान दुरमत छीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला का जाने पेयो पेटै तास परम गुरदेव दसम द्वारा अगम पारा परम पुरख की काटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती जागत रहे सकबू न सोवे तीन्त लोक समाध पलोवे बीज मंत्र ले हृदय रहे मनुआ उल्ट सुन मैं गह जागत रहे न अलिया पाखे पांचो इंद्री बस कर राखे गुर की साखी राखे चीत गुर की साखी राखे चीत मंतन हर पै कृष्ण प्रीत कर पल्लव साखा विचारे अपना जन्म न जुए हारे असुरनी नदी का बंदे मूल पश्चिम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सो निचर चरे जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे चौमुख दीवा ज्योत द्वार पल्लू अंत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रहे मन मान करत ना मोहे मोहे गह गुह मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन तनी पंच शब्द निर्माइल बाजे ढुलके चवर शंख कन गाजे दल मल दैत हो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पहंगर प्रसाद राग नट नारायण महला चौथा मेरे मन जप अहनस नाम हरे कोट कोट दुख बहुकीने सब पर हर पास तरे रहाओ हर हर नाम जपे अराधे सेवक पाए खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यो पानी महल हरे खिन खिर नर नारायण गावे मुख बोले नर नर हरे पंच दुख असाध नगर मह एक खिन पल दूर करे वडभागी हर नाम ते आवे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूढ़ मुग्ध से निस्तरे कृपा कृपा तहर जग जीवन रख लेवो सरन परे जन नानक तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम मैं नाम रले राम नाम जपेओ गुर बचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर अगमा गोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बल ले परखोत्तम हर नाम जन गयो गायो सब दालत दुख दल ले बिच दे ही दुख साध पंच धातु हर किए खिन पर ले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखे सस कमले उन वै कन कन कन हर गरजे मन बिकसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद पले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीसर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यों चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगुन बिखिया बिखिया के बहु बार बार निमखे अवगने आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण खे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ सरनगे तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी हम राखो पाप हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत छीपा दृष्टार्यो गुण गावत छीपा दुष्टार्यो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गावे स्वामी हों बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह तुहुर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह न सकै हम तुम वड वड पुरख वड़ गे जन नानक को दया प्रभ तारो हम सेव है तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी मत गुर मत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लूने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह न सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही जान गुन जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जपियो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तेंदुए बांध्यो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानके प्रभ बढ़ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवरणे हर हर दयाल दया प्रवतारी सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड आगम अगोचर स्वामी सब तुम ते आवे हम हर रुड़ने जिनको तुमरे बड़ कटाख है गुरमुख हर सिमरणे एह परपंच किया प्रभ स्वामी जग सब जग जीवन जुगणे ज्यों सल ले सल उठे बहु लहरी मिल सल ले सल सलल सामने जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरद उस्तत तारो हम कर है प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछे हर देवो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल क्योंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरेन रावाल सब दाल द पंज दुख लाल हर हो नदर निहाल रहाओ हर का गृह हर आपक सवारियो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल अपनी कृपा करी आप गृह आयो हर हम हर की गुर की है दसीठी हम देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंदो आनंद पै हर आवते सुने मेरे लाल जन नानक हर हर मिले पै गुलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल सत संगत शोभा बंती सुन अकथ कथा सुख बंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीरत कल जुग विच उत्तम अत गुरमत कथा भजंती जन जन जन अप सुनी मनी है जिन जन तिस जन कह हो कुरबानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती जन नानकार कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिसको हो बल बल बाल सो हर जन है पल पहाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई चा हर हा चाल अंतर कपट चुकावो मेरे सिखो गुर सिखो नेह कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर ते सिख मेरे हर पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट दुह दूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट महला राग नट
1: संत संग मेरे मन के प्रीत संत गुण बसै मेरा चित संत आग्या मन मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होय निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन मंत संत प्रसाद मेरे बिखाय हंत मुकत जुगत एहा निदान प्रभ दयाल मोह देव दान नानक प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगे नाहे दूर करण करावन हाजरा हजूर राह सुनत जियो जास नाम दुख बिनसै सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मन जान ताकि सेव करे जाके कर सगल समाहे जिस बिरसा कोय नाहे जी जंतर करे प्रत्यय पाल सदा सदा सेव कृपाल सदा धर्म जाके दीबाण बे मोहताज नहीं किछ काण सब किछ करना अपने आप रे मन मेरे तू ता कहो जाप सा संगत को होए बलिहार जास मिल होवे उदार नाम संग मन तने रात नानको प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजमा दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर समरथ की करना जियो पिंड धन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवन का मूल रव रया सर्वत्र ठाई सुख मसठूल आल जाल बेकार ताज सब हर गुना नित गाओ

पदमन जावल रे पदमन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे। दादर तू कभे ना जान सरे पखस से बाल बसस निर्मल जल अमृत न लख सरे रहो। बस जल नच न वस्तु अलियल मेर चचा गुन रे चंद कुमुंदनी दूर निवस स्वर पवकार नरे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कब होना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसै जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कब न छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडे नाम न रचे एक हर हर चरणी रे पूर्व लिखिया पाव स्नानक रचना नाम जप रे मर महला पहला श्लोक। पत जपने ते असंख हो है हर चरणी मन लाग अठ सठ तीर्थ नाम प्रभ नानक जस मस्तक भाग शबद। सखी सहली गर्भ गहली सुन सकी एक बात सहली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बन ज्यों ना रह कैसे राखा।

प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया। श्लोक महला पहला।

ही जहां करी न हुई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले।

एक ओहंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पादशाही दसवीं कभ्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सवै तुम गावो आप हाथ द मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवाए करतारा मोर अच्छा निज करद करे सब वैरण को आसंगरय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन शत्रु हमारे मारिय है आप हाथ दे मुझे उबर है मरण काल का त्रास निवर है उजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजू करो रक्षा राख लियो मैं राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहोपुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुन सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सफल कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के बट बट की जान जबद कर।

एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास है हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करुणा ने दया बताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यंतर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहों साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हा नाम जपिया बन छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यंतर के बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा संग निभाए तिन्हां दी कमाई दा ध्यंतर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान दरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेते आमन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रिश्या रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है उले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट सचे पिता वाहिगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी ने पार मेरा बख्शिश कृपा की आप जी की हजूरी संध्या वेले दे सुंदर दीवान साजरे हैं साजरे दीवाना की रमता विच आप जी की पवित्र बाणी सोदा रह साहब जी के पाठ होए बाणी पाठ करदिया होया हुई अनेक प्रकार दिया गलतियां भुला दी माफी बख्शो। अगा वास्ते सत स्पष्ट बाणी पढ़ने की दात बख्शनी गुरबाणी का भाव आईया संगतां दे हिरदिया वसा के किरतार्थ करना आई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा कीती दरकर विखे कीतियां सेवावां दार प्रवान करनिया परिवारां सुख शांति चढ़दी कला दाता बख्शनिया प्यारे खालसा पंथ की चढ़दी कला करनी
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਮੂਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਲਾਈ ਸ੍ਰੀ

कि नानक पातशाह ने नानक वर्त्या है, अपने आप नु संबोधन किया, हे नानका आ देख, आज सच है, जुगाद सच है पी सच है, होसी पी सच होएगा, ये नानक, हे नानका, हे मेरे मन, होसी पी सच। इस करतार दा आधार सानू दे के फिर पातशाह ने आस पास जो पाखंड वर्त रहा सी, सब तो पहली पौड़ी विच उसका नोटिस लिया है। एक मनुख दूजे मनुख नू एक कह देवे कि तेरा परछावा मेरे पैर ते पै गया ते मैं पिट गया, मैनू दोबारा जाके नहाना पेगा, केहो जी सोच है? ए सोच उस वेले वर्त रही सी, अज भी किते किते वर्त रही होएगी। पातशाह ने सख्त नोटिस लिया कि भलिया सोचे सोच ना हो भाई, ए तन जिन्ना मर्जी सोच, सोच दा मतलब सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल ना तन ते जा, सोच सोचना नहीं। शब्दावली गुरबाणी विच एक होर गल, गुरबाणी विच वक वक भाषावां नहीं हन, गुरबाणी विच वक वक भाषावां दे शब्द हन जिन्ना ते अनुशासन गुरबाणी दा लगदा। किरिया दा संबंध एक वचन स्त्रीलिंग बहुलिंग, स्त्रीलिंग पुलिंग, एक वचन बहुवचन, पहला पुरख दूजा पुरख, सारा व्याकरण गुरबाणी दा लागू होंदा है, शब्द धारे ने, क्योंकि किसे दुनिया दी भाषा विच गुरबाणी दे सारे भाव नूं समा के दे पाउणा संभव ही नहीं सी। पर कानून गुरबाणी दा लागू होंदा है। लिपि चिन्हन, लिपि नूं भाषा बनाउंदा है कानून, जिसनूं असीं व्याकरण कहिंदे ग्रामर। जे ग्रामर वक्री है तो भाषा वक्री है, एक भाषा वही दूजी भाषा नहीं हो सकती है, एक भाषा वही दूजी भाषा दे शब्द होंगे। गुरबाणी विच कई भाषावां दे शब्द हैं, गुरबाणी विच कई भाषावां नहीं हैं। सोचे इत किसे होर भाषा विच इसका संबंध थिंकिंग है, शब्द आया है पर इसका भाव गुरबाणी का लगता है। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, तन साफ करना मन साफ नहीं होता। भाई तू परछावां पै के नहाण चला गया, नहा के कहना मैं वधिया हो गया, नहाण नाल कुछ नहीं होता है, मन की मैल है। सोच करन दे नाल, तन की सोच करन दे नाल मन की सोच संभव नहीं होती है। सोच है सोच ना हो भाई, जे सोची लगवा। फिर उन्हां दा नोटिस लिया गुरु साहब ने, मौनधारी जी, मौनधारी बाबे ने, भाई तेरे पल्ले कुछ है ते चार अखर दस ना किसे लुकाई ना, उन्हां दा भला होए, क्योंकि राह जपदा है, राह समझण दा है, राह समझाउण दा है। दस मौनधारी चुप है, चुप ना हो भाई, तू जबान चुप कीती है, मन नहीं तेरा चुप होंदा है, मन तेरा बोल रहा है। चुप है, चुप ना हो भाई, जे लाए रहा लिवता तू लिव जोड़ के जिन्ने मर्जी साल बैठा रहे, उन्ने साल तेरी अंदर मन तुरदा रहा, होर भजदा। कईयां ने कहा भी अपना पूरा चा ला लो, शायद इस तरह असी अपने शरीर नूं सहज कर लांगे। नहीं, पातशाह कहिंदे भुखिया भुख ना उतरी, इन्ना सारे पुरियां दे भार लद लद के पदार्थ इन्हां दे सामने रख दो तां वी भुख नहीं उतरनी है।

क्योंकि भुख मन विच है। मन दा राज नहीं होंदा है। संतोख सहज इसने रजाना है। सती सती होना, सतिया मन संतोख उपजै, देना कै विचार। आओ पाशाह दे इस सब तो पहले नोटिस उस दे नाल जुड़दे हां।

एक बारीक नुक्ता है। एक पासे गुरु साहिब सानू कहंदे है अकली साहिब सेवी है, ते इस दे विच होर नुक्ता है सेवी है। जेड़ी सेवा सानू समझ आउंदी है ओ सेवा है जोड़ियां दी सेवा, लंगर दी सेवा,

जद तक कला कला शब्द गुरबाणी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे हर शब्द की प्लेलिस्ट है, हर शब्द दिया वीडियोस ने दस गावन का भाव की है, गावन इन गुरबाणी, सेवा इन गुरबाणी, मन इन गुरबाणी, दो बात आ गई, सुनिया इन गुरबाणी, गावी है सुनी है। आम तौर पर कहेंगे आपे गाइए उची उची तो नाल सुनिए, नहीं समझिए बुझिए गावीए सुनिए, क्योंकि मन की बात ने मन रखी है भाव विचारां विच।

इतनी सेवा प्रवान कर दी। कल 1:30 बजे की हाजरी है, उपरंत जपजी साहब संगत नो अर्पण करना है। इस ऐप राही आप संगत का थापड़ा आशीर्वाद और संगत दे करां विच जिहड़ी साडा पनप रहा साडा भविख है उन्हां तक गुरु की आवाज़ नो ऑथेंटिक मैसेज बिना डुल्ले बेरां नो कठियां करके ये सांभिया होया तुहाडे तक पहुँचाना है। आओ उस दे लई आप जी सहयोग करना, आप जी दसना, जो गलतियां कीतियां वो जरूर दसना ताकि सुधार करके संगती राय दे नाल असी बच्चों चंगा भविख उन्हां दी चोली दे सकीए।

पंजवा मन मह चितव चितवने उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत सोहिला

सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा रखो मान देह प्रीत साधु संत स्वामी हरगुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान

आता शरण समराज का गोचर हर समृत दखलात नान दिन तुर जन पाच मिल लिखत तुरमात कैदार महला पंजमा कर पंजमा क्यों कर सतगुरु प्रसाद बेसरत नाहे मनते हरि अभय प्रीत महाप्रबल पई यान बिखे जरी रव बूंद कहाँ त्याग चात्र मिन रहत न करी गुण गोपाल चार रत्ना टेव ए हे परी मानाद कुरंक मोह।

से जन मला ज्वर लागे नाम तेरे प्यार तिन किरण मिलता मस्तक लाई जिन सतगुर पूरा त्याया।

मन मुख मूल गुआ लाभ मांगे लाह लाभ कि जमकाल सदा है सरयो पर दूजे पाए पर गोई बैले बेग पवे दिन राती मैं रोग न जाई पड़ पड़ लुजे बाद बखाने बिन माया सुरत गवाई सतगुर सेवे परम गत पावे नाम मिले बड़ियाई नानक नाम जनाम रसिया दल साचे पद पाई पर महला तीजा मन मुख आसा नहीं उतरे दूजे पाए कवाए उधर न सहन न परिय कबो तस्नागन पचाए सदानंद राम रस राते हृदय नाम दुविधा मन पागे हर हरे अमृत तेरा।

जो तुम्हें लाए सो प्रभ सचा सदी सचा सच सवे कर नारे सर सो जी पाए सच नाम निचारा परम अल्लाह तीजा

हरे आप बोलावे आप बोले हरे आम निरंकार निराहारी आप जिते मिले सोते मिलसे जन नानक क्या है जंत विचारी पैरों महल्ला चौथा सत्संग साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुने अमर पिना तिन हम सरे मैं नित चरणे जग जीवन हर त्याय तरण अनेक संग नाम हर तेरे न जाय देवायत करने राव गुर सिख हर बोलो हर गावो लै गुरम तर जपने सो उपदेश सुन गुर केरा सो जन पावे हर सुख कणे तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जित जन जने जन सागरा तै आया मेरा हर हर सेवा सच दर के हर जन बने

हमारा लेकर वासे हम सुख पाया ता सब सोहेले गुरु पूरे पिता संग में ले रहा हूँ।

उठा मदन शीतल मारे अमृत उठा पारम गुर पाए दयाल रण दादिक पै नयाल पर मल्ला पन्मा सगु मेरा बेमताज सगु मेरा सच्चा साज सगु मेरा सब सका दाता सगु मेरा पुरख विदाता गुरदाता नाही को देव जस मस्तक भाग सुलगा सेव राव सत गुर मेरा सरा प्रतपाल सगुर मेरा मार जवाल सतगुरु मेरा पुरख विधाता सगुर जाता नाही को देव जिस मत भाग सुलागा सेव राव सतगुरु मेरा सतगुरु मेरा सरा प्रतपाल सगुरु मेरा मार्ज बाल सगुरु मेरे की वड्याई प्रगट पई है सब ने छाई सतगुरु मेरा तान तान सगुरु मेरा कर दे बान सगुरु क्यों सत बल जाया प्रगट मारे दिन कर दे कलाया

0: कृता सुत भरता बंदन कर्म तरम हो करता बंदन काटन हर मन वस तो निर्कर
1: हर हर नाम चले मुरपना के अरदास कर नानक तुम्हें सुनाई जो पावे त्यो रखो रखो गसाई पैरो महला पंजवा गुरमिल त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाम

गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर गुरु हर

अम्य दृष्टि शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह बस करे सबे बल सदा सुख मन बसे

अलखतो वै सो कहो टाल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ संत महरि आयो नानके प्रभ साथ अशपरी जय मात पिता सुत मीत न भाई मन मोहा नाम तेरे संसाए जय मां भ्यान दूध जम दले हतै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उधारी अन्नपुन चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जत हो सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जत निस्तरे अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत गावे जे मारगे जात केला तै हर का नाम संग हो सवे लैसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कूड़ लखवाई नाम जपत पार पराही

दिन से रात मन की मैल न तंते जात। इस देही को वो साधना करे मन ते कबून बिख्या टरे। जल तोवे वो देह नीत शुद्ध गावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच। नानक नाम उदरे पतित बहु मूच। बहुत स्याण में जमका पौ व्यापे अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापे। भीख अनेक अगर नहीं बुझे कोट पाव दरगे नहीं सिजे। छूट सुनाही उप्याल मोह व्यापे माया जाल। अवर करतू सगली जम डाने जो गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जब तुख दुख जाए नानक बोले सह सुवाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साथ संगे ओमे शोरे। जे को जन मरण ते डरे साजना की सड़नी परे। जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान। आप इसको जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन हो सगल गिरी ना हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल शिष्ट साजना। सुख दुख जन समिष्टेता नानक भाव पुन्नी लेपा। निरतन को तन तेरो नाउन था में को नाउ तेरा था माने को प्रभ तेरो मान। सगल कटाको देवो दान करन करावन हार स्वामी। सगल कटा कह अंतर जामी अपनी गदमत जानो आपे। आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते होए। नानक अवन न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हरिया। सगल उत्तम में उत्तम भला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन मुखानी।

palabra cabe. ज्यों प्रवरा कहते वी रे गुरप्रसाद नान सच कहे कबू हो पंडित करे व्याख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तर तीर्थ स्नान कबू से साधक मुख ज्ञान कबू की रहस पतंग हुए जिया आनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे ज्यों प्रभावे तिवे नचावे जो

आपे न जाए किता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन से व्याचन पाया मोहन नान गाविय गुणी निदान।

देखो कहे कर विचार करत क्या करना नाही सुमार तौल तरम दया का पूत संतोषा प्रख्या जन सूत।

कितन सुअलह रूप कति दात जन कौन कूत कित पसाओ एको कवाओ तिसे होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई परिकार तो सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंग रन्मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दाचार असंग सूर मोह पाख सार असंग मोल लाए तार कुदरत कम

कवण सवेला वखत कवण कवन थत कवण वार कवण सरुति मा कवण जतो आ आकार वेल न पाया पंडते दे हो वे लेख पुराण वखत न पायो का ध्यान दे लिखन ले कुरान थेतवार न जोगी जाने रुतमा न कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाना सोई किव करे आखा किव साला है क्यो वरने किव जाना नानके आखन सब को आख एक दो एक से आना वड्डा साहेब वड्डी नाई किता जाका होवै नानक देखो आपो जाने के गया न सो है पाताल पाताल लख आगास आगास उड़क उड़क पाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह

सलाहि सलाय तिसरत न पाइया नदियां ते वा पवे सुमंद न जानिए समुंद सा सुल्तान ग्रह से माल तन कीड़ी तल न हो जित मन हो न विसरह

आपे जाने आपे दे आखें सिफ के जिसनों बख्शे सिफत सला नानक पातशाही पातशाह।

इत्ते किते होर कर है ताय आख न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोर बिगाड़ तां लिखिए सिर गावारा गावार सो दर कहा सो घर कहा जितवै सर्व संभाले वाजे नादा ने का संखा केते बावन हारे केते राग परि स्यो कही अन केते गावन हारे गावा तो नो पुण पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावा चित गुप्त लिख दान है लिख लिख धर्म विचारे गावा ईश्वर ब्रह्मा देवी सो सदा सुवारे गावा इंदा दासन बैठे देवत्या दर नाले गावा सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जते सती संतोखी गावा वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सुर दुग दुग वेदा नाले गावा मोनिया मन मोन सुरगा मछ पयाले गावन रत्न पाए तेरे अर्थ तीर्थ नाले गावा जोत महाबल सूरा गावा खानी चारे गावा खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तनो गावा जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई है पी हो सिदैन दसी रचना जिन रचाई रंगे रंगे पाते कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या किता अपना जिवते दी वडियाई जोत पावे सोई कर से हुकम ना करना जाई सो पात साहब साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोष रम पचोली ध्यान के करह प्रभूत खिंता काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदे से आदे साधा नील नादना जुग जुग को वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कर करो आजा नाथ आप नाथ नाथे सब जाके रस देवरा साध संजोग विजोदय कर चलावै लिखे आवै भाग आदे से आदे साधा नील नादना जुग जुग को वेश एका माई जुगत व्याई तिन तिल परवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिवत पावै तिवै चलावै जिव होवे फुरमाण ओ हो वेखै ओ नानद न आवै बहुता ए होवे डाण

एक दूजे पर लख हो है लख हो मैं लख वेश लख लगेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एत राय पद पवड़िया चढ़िया होया केस सुन गल्ला आकाश के केटा आए रेस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठेस आखन जोर चुपै न जोर जो न मंगन देन न जोर जो न जीवन मरण जोर जो न राजमाल मन सोर जो न सुरति ज्ञान विचार जो न जुगति छुटाए संसार जिस हद जोर कर वेखा सोए नानक उत्तम नीच न कोए राते रुते थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिसवे तरते थाप रखे धर्मसाल तिसवे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत

कातब काए उथ पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काय आख हो करम किते पौन पाणी व्यसंतर किते कान महेश किते बर में काढ़ करिया रूप रंग के वेश कित्या करम भूमि मेर किते किते तू उपदेश किते इंद चंद सूर किते किते मंडल देश किते सिद्ध बुद्ध नार किते किते देवी वेश किते देव दान मन किते किते रत्न समुंद कितिया खानी कितिया बाणी किते पाद नरेंद कितिया सुरते सेव किते नानक अंत नायंत ज्ञान खंड में

रूप ताकि अगला कतिया न जाए देखो कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुर तुम आत्मा न बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सदा की सुरद कर्म खंड के बाणी जोर चिते हो न कोई होर चिते जोध महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाए नाव मरे न ठाके जाए जिनके राम से मन माहे तिथे भक्तो सका लोक रन सच्चा मन सोए सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदनिहार तिथे खंड मंडल वर पंड देखो कथे तयंत नयंत तिथे लो आकार देव देव हुकम देव स्वीकार वेख्या विषय कर विचार नानक कथना करडा साव जत भारा तिर सुनियार अरण मत वेद हथियार पाओ खला गंतवताओ पांडा पाओ अमृत ताल कड़िया सब सची टकसाल जिनको नजर करम तिनका नानक नजरी।

भाने सर्व माने सर्व त्राण सर्व सर्व प्राण सर्व त्राण सर्व भुक्ता सर्व जुक्ता सर्व देव सर्व पेव सर्व काले सर्व पाले रवाल शंत प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मंत्र मान दे बेवाद उदार सर्व पालक सर्व काल सर्व गोपन काल जतर ततर विराज अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख आधार मूर्त जोन आद सेख देश और न पे जाकर

फिर एक दे पेव न जानी जेबेद और तेव रूप रंग न जात पस जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन मन भी न चकर बकर फिर चतर चक मानी प्रतीन।

देवो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला करता नमो चांद रूपे नमो इंद्रे नाद भूते कलंकम नाने कलंकी स्वरूपे नमो राज विश्रम परम रूपे नमो जोग जवेश्रम पर सिद्ध कलंकर रूपे अलंकर लंके नमो आसा से नमो बांग बंके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी एकामे एक श्री चंद अजय लय अभय अभय भू अजू नास काश गंज भंज लख पख अकाल दयाल लेख भेख नाम काम गा अडा

स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं दुआ प्रसाद सवैय श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर होकर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सदाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा उन्दे एक रति बने एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग सकूत बौन के ओन को जात निवारे भारी बजान के भूपली बिदना आवत सीजन जात जात विचारे एते बैदो कहां बै भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशां को बाज ढोल मृ दंग नगारे गूंजत गोड़क जान के सुंदर हिंस रही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बने अंत को अंत के दाम सुधारे तीर्थ नान दे आदम दान संजम नेम अनेक बसे खै भेद बराण कतेब करान जमीन जवान सबान के पिखे

तोर भजन की है प्यासा तुम्हें छाट कोई अपना त्याऊ जो वर जाऊ सो तुम दे पाऊ से सिख मारे तारिया चुन चुन सतर मारे मारिया आबा दे मुझे वरिया मन काल का त्रास मरिया जो सा मारे बच्चा श्री जो करे और अच्छा राख लियो मोय राखण हारे संसहाय प्यारे दीन बंधु के हंता तुम पुरी कंधा गाल पाए ब्रह्मा अवतरा गाल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किए तमाशा जमन काल जोगी सब की हो वेदराज ब्रह्मा ज्योति हो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंत कह अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तेसी को हमारी सगल प्रजा ने आप सुवारी सेवकों को सब दियो सतरन को पाल मोहित कियो कट कट के अंदर की जान भले बुरे के भीर पछाण चीटी दे कुंजर सतूला सब पर कृपा दिशा बूला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी है के की पीर पछाने कट कट के बड़बड़ की जाने जाप उद कर करा करता रा प्रजा धरतम दे पारा जमा कर कर दो कबू तुम मैं मिल दे तर सबू जेते बदन से सब धारे आप अपनी मुझे चारे तुम सब ही तेरे आत्म आलम जानत भेद भेदे आर आलम

भक्त रहण दयाणी माता के उदर में प्रतिपाल के सो के मनो सारी है मनो क्यों सारी है वृदाता जी अगर मैं आहार पहुंचावे उसनों क्यों पो न सके इसनु अपनी लिब लावे अपनी लिबे अपने लाए गुरु सास मालिक कहे नानक वृदाता सो के मनो सारी है जैसी अगर उदर

वार श्लोक का नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुही श्लोक महला पहला बले हरि गुरु अपने देव हाड़ी सदवार जिन मानस

दिज बुद्ध विवेका रहाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग दसां ही पातशाहियां दी जोत सर्ब सांझीवालता दे लखायक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान बहुत ही सत्कार योग गुरु स्वरूप सात संगत जी बहुत वडभागे हो गुरु चरणा विच बराज के गुरु सवारियां तो गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो सो गुरु स्वरूप सात संगत जी अज हजूर ने जो श्री मुख वाक बख्शिश कीते हन ये पवित्र बचन धन पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की पवित्र रसना तो सोरठ राग विच उचारण कीती हुई ये पवित्र अष्टपदी गुरु स्वरूप सात संगत जी श्री गुरु ग्रंथ

जिस पुरब लिखे का लैणा, जिस पुरब लिखे का लैणा, जिस पुरब जिस ये जिस तरह असी संगत विच बह जाने ते सारे गुरमुख कहिंदे साध संगत तुसी वडभागे हो ते सानू लगदा भी खुशामद कर रहे ने। सच्चे पातशाह कहिंदे गुरमुखा ये बड़ी वड्डी दात है तेरे मथे ते लेख लिखे ने तां तू इत्थे आके बैठा, हुक्म तो बिना कोई बह नहीं सकदा। अंतले बोल तेरो सेवक ए रंग राता, तेरा सेवक आ जेड़ा ना सिर करमन के करमा इस प्यार विच रंगिया गया, रंग प्यार विच राता। पयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एह मन राता। कृपालू अकाल पुरख वैगुरु दीना दे दुख दूर करन वाला, उने बख्शिश कीती ते मेरा मन तेरे कीर्तन विच तेरी सिफ सलाह दे विच रंगिया गया। रहाओ दूजा सारे कर्म कांडा दा खंडन करके, सारे कर्म कांडा नू कंडेम करके जदों पुछया महाराज ए नहीं करने, खंडन दा मतलब हुंदा है नहीं करना ते मंडन दा मतलब हुंदा है ए करना है। दोवें रहाओ वालियां पंक्तियां विच मंडन है, बाकी सारे शब्द विच खंडन है। करना की है? हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै करमा, हर परयो स्वामी कै द्वारे दीजे बुद्ध विवेका दी मंग करनी है। सारे शब्द विच ए निचोड़ दस्या है भी संगत विच जुड़ना जरूरी है, संगत विच जुड़ के सुरत नू बाहर ना जान दे, सुरत नू वाहगुरु दे रंग विच रंग लै, सुरत नू शब्द विच जोड़ लै, ध्यान गुरु शब्द विच जुड़ जाए ते फिर साडे ए लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, मां वाका अनुसार जीवन सफल हो जाए। इनियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुलां गलतियां दी खिमा बख्शनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया।

0: जे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वज कला जित कर धारिया तुर करम पाया तुत जिन को से नाम हर कै लागे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
1: संत साजन पहे सर से पूरे गुरते
0: सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे
1: बिनवंत नानक

प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुन असले की पहिवारी ये पैरों की पंचो नारी पंच महर्ख दिसाख सुनावह बंगाल माध माधव गावह ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पात अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माँ

सैतान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाईया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन केह गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे दिसै दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट दिंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक वैसे वे परवाह साचा साहेब साच नाहे भाख्या पाओ अपार आखे मंगे देह दे दात करे दातार फिर के अगे रखिए जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जेहो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तस पावा विण भाणे के नाए करी जेती सेठ पाई वेखा विण कर्म के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक जी एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूने होए नवा खन्ना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउर खाए कै जस कीर्त जग ले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुजई जे तस गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत तवल आकाश सुनै दीप लोप ताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर बर्मा इंद सुनै मुख सलाहन मंद सुने जोग जोग तन भेद सुने सात सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अड़सठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सरा गुणा के गाह सुने सिख पीर पा शाह सुने अंधे पावे राह सुने हाथ होवे सगाह नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास मने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मने काबे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मने सुरत होवे मन बुद्ध मने सगल भवन की सुध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत से प्रगट जाए मने मग न चले पंथ मने धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मने पावे मुख द्वार मने परवारे साधार मने तारे तारे गुर सिख मने नानक पवे ना पैख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय पंच परवान
पंच प्रधान पंचे पावे दर गय मान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह कर विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवे सचियार तबले उपर किता भार धरती होर पर होर होर तिसते भार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होय केता तान सवाल्यो रूप केती दाल जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती संख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोह लव लाए तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अंबर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भक खाहे असंख निंदक सर करै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सर संजोग वखाण जिन ए लिखे तै सरनाहे जै फरमाए तैव तैव पाहे जेता कीता तेता नाओ बिन नावे नाही कोथाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तद पावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देह पानी तोते उतर सखे मूह तपली ती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावे कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सवेला भगत कवण कवण थित कवण वार कवण सिरुति माहो कवण जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे हो वेले

लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहने कवात सहस अठारह कहनक तेबा असलू एक तहत लेखा होए तां लिखी है लेखे होए विनास नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाही इती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानी है समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तस मनो ना विसरै अंत न सिवती कह

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाउ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर

0: इतनी हाजरी प्रवान करनी पोलटो की खिमा। अगला प्रोग्राम सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु घर के कीर्तनी सत्कारयोग भाई साहब भाई दलवाग सिंह जी और उन्होंने जथे का, जिन्होंने आप जी सजे दीवान के अमृत वे कीर्तन द्वारा निहाल किया। हुण आप जी के सन्मुख सत्कारयोग गुरु पंथ के विद्वान कथावाचक भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप संगतों के नाल गुरमत विचार की सांझ पाउणगे। इस हफ्ते जो इतिहास गुरु पातशाह के इतिहास के इतिहासक दिहाड़ा लंघ के गया है, 22 सितंबर सिख धर्म के बानी पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जिन्होंने 70 साल की उम्र के करतारपुर साहब की पावन पित्र धरती के उत्ते अपना पंच पुत्र श्री त्यागया ज्योति जो समाए, उस इतिहासक दिहाड़े के प्रथाए आप जी के नाल गुरु पातशाह का पावन इतिहास पावन बाणी की रोशनी आप जी ने साझा करता जतन करे सत्कारयोग भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी। इस दे नाल ही बेनती करा कि बाहर मेन गेट के खब्बे पासे डॉक्टर साहब पहुँचे हुए हैं, अगर किसी ने कोई चैकअप करवाना हो कोई डॉक्टरी सलाह मशवरा लेना हो 1:30 बजे तक पेशेंट्स लैणगे, उस तो उपरंत उन्होंने नहीं लैने। सो आप संगतों की जानों बेनती है कि अगर किसी ने कोई चैकअप करवाना हो तो उन्होंने नाल संपर्क कर सकता है। आओ हुण भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी लुधियाने वालियां पासों गुरमत विचारां गुरु इतिहास सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु साहिब जी, बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बुलै। वाहिगुरु जी

0: satsangya. Satsangya. आप संगतां वड़ भागे हो तंता दे योग हो जिन्होंने बड़े ही प्यार नाल गुरु की बाणी दा कीर्तन हरजा सरवण कीता है। कला सरवण ने कीता नाल नाल गाया भी है। खास करके भी मुड़ दियां संगतां दे विच बड़ा प्यार है गुरु प्रति। मैं भैणां वल जदों दा इत्थे आया देख रहा भी इन्हां नूं भावे तुसीं बोलो कहो जां ना कहो ये नाल नाल कीर्ति गुरु की कर दियां। ये गुरु नानक पातशाही के फलसफे नूं अपनाया होया है। ये बीबियां भैणां मातावां भावें बिरध अवस्था विच वी हन तां वी नाल नाल गुरु की कीर्ति करदियां हन। इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सतगुरु मेहरामत करन इसे तरह इन्हां नूं नाम नाल बाणी नाल गुरु की कीर्ति नाल जोड़ी रखण। सो आप संगतां नाल तकरीबन चार वीकां तों गुर शब्द द्वारा सांझ पाउंदे आ रहे हैं। समा मेरा थोड़ा जिहा वध सी पर सैकटरी साहिबां वल्लों उसारा हो गया क्योंकि कई वार कई चेंजस करनिया पैंदियां। कोई बुलारा मिस हो गया तो समा वध गया, जे बुलारा कोई पहला आ गया तो समा घट गया। इन्हां दा स्टेज नूं मैनेज करन दा इह ढंग हुंदा है। सैकटरी साहिबां पास बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है स्टेज नूं संभालना। तो सतसंगत यह अज दा अखीरला दौरान सी ते मैनू अक्सर यह संगतां हुक्म करदियां हन कि गुरु रामदास महाराज के दर के कीर्तनियां होण करके गुरु रामदास पातशाह महाराज की वड्याई का उस्तत का शब्द कोई ना कोई सरवण करवाया करो। तो मैं सोचा भी वैसे इस शब्द का भी एक लॉजिक है बड़ा तकड़ा, इस शब्द के पिछे भी एक कारण है बड़ा तकड़ा। ये बाबा सत्ता जी और बाबा बलवंडा जी का उच्चारण किया हुआ शब्द है। एक समा सी गुरु अर्जन देव पातशाह जी नाराज होकर चले गए तो गुस्से होंदिया होंदिया यह गल कह गया भी तुहाडे गुरु रामदास नूं कौन जाणदा। तो जो पिता गुरु बारे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने मंदी शब्दावली सरवण की तो कहन लगे तुसीं फिट के गए चले जाओ मत्थे ना लग्यो। इस तों बाद गुरसिखां नूं क्या फड़ो रबाबां फड़ो सरंदे कीर्तन करो। गुरसिखां विच इह प्रथा नहीं सी रबाबीए मरासी जिहड़े डूम सन इह गाउंदे हुंदे सन। इन्हां कोल राग विद्या हुंदी सी, साडे वर्गियां कोल ते है ही कुछ नहीं सी। तेरे सत यह सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज की बख्श है। साड़ी झोली विच जेकर कीर्तन की दात पाई तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी। सतसंगत चले गए तो बड़ा औखा समा कोड़ हो गया। तन ते फिटक गए, वाकई फिट गए, शरीर पाट गया। इतिहास कहिंदा भी बड़े मंदे हाल कोई भी मत्थे ना लावे क्योंकि सतगुरु जी ने कह दिता जिहड़ा इन्हां दे मत्थे लगेगा जां इन्हां नूं मत्थे लावेगा नशर करांगे। तो हुण जावे किहड़ा कहावत तो होगी भी चूहे सलाह करते सन भी बिल्ली के गल च टली खोड़ा कि बने हूँ कि जाए उत्थे उन्होंने बखशाने वास्ते कोई ना तुरे। फिर गुरसिखा ने सलाह की भी नहीं गुरु के कीर्तिए सन भुल कर बैठे हैं तो क्यों ना हो आपा कोई ना कोई उदम करिए। फिर सारे ने सलाह करके भाई लद्दा जी ने जाके बेनती की तो उन्होंने सतगुरु जी पास लैके आंदा भुल बखशाई। आप नशर होके आए अपना मुख काला किया उन्होंने लियान वास्ते छित्रां दा गल च हार पाया खोते दे उत्ते बैठे ढोली लियांदा। ते साध संगत बाहां पिछे अपनियां मशकां बन के फिर गुरु रामदास पातशाह जी दर वल नूं आए। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहन लगे भाई लद्दा जी इह की कीता उदां ही आ जांदे। कहन लगे नहीं सतगुरु इह तुहाडा हुक्म सी वजाया है, इह तुहाडा हुक्म सी भी जिहड़ा लै के आवेगा नशर करांगे, मैं आप ही नशर होके आ गया। सतगुरु जी ने अपने हजूरीए नाल मुख साफ किया मुख तो कल खिलाई। भाई लद्दा जी के गल चित्रां का हार उतार के बाहां खोल के मशकां खोल के गल ना ला लिया। कहन लगे दसो हुक्म की है। कहन लगे सतगुरु इन्हां नूं बख्श दिओ। गुरु अर्जन देव पातशाह जी सोची पै गए। कहन लगे गुरसिख का वचन है असीं वचन किया है बख्शना तो पवेगा पर किदां बख्शीए। कहन लगे भाई लद्दा जी गल साढ़े तक हुंदी तां असीं बख्श दिंदे पर यह गल तां होणा पिता गुरु रामदास पातशाह जी के प्रथाए इन्होंने मंदे बोल कहे हैं जेडे मुख तो इन्होंने मंदे बोल कहे हैं उसे मुख नाल उस्तत करन ते कोड़ अट जाएगा। सतसंग इतिहास दसदा भी गुरु रामदास पातशाह जी दीआं परिक्रमा विच उतरे दुख भंजनी बेरी थल्लों इशनान कीता रबाबां फड़ियां जाके अंदर गुरु की वड्याई उस्तत गुरु की हजूरी विच बैठ के यह शब्द उच्चारण किया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। ਸਤਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਨਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਕੋੜ ਹਟਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਸਤਸੰਗਤ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਤਰੋ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰਸਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ।

हे मेरे मन नानक वो विगस्ता है बेपरवाह है क्योंकि उसने सारा इंतजाम करके रखा है सारा विधान सारा सिस्टम ईहा उहा एक है और है जो सानू नजरी पैंदा है ते जो नजरी नहीं पैंदा है जो सुनता है ते जो नहीं सुनता है सारा उस अधीन एक परफेक्ट बैलेंस एक अचंबा करने वाली इंटरडिपेंडेंस दे नाल जिड़ी डीएनए दा असी बने हाँ ते जिड़ी डीएनए दी कणक बनी है इन्हां दा कोई आपस संबंध ही कोई नहीं पर दोनों दे तो विद्युत बिना गुजारा नहीं उसने किया है पानी दी बाल्टी एडा वड्डा समुंदर पानी इन्नू गर्म करन लई स्टोव एडा वड्डा सूरज पखा देन लई हवा अगो रोकन लई पहाड़ किन्ना भारी महाप्रबंध है करतार विगस रहा है ये बच्चों खेडो

जे गावे दा अर्थ निरा गायन करना होए तो गावे को तान होवे किसे तान, एक ही गल बनी। जोर ला के गाओ जिन्ना जोर होए, होवे किसे तान, जिन्ना किसे च जोर है उन्ना जोर ला दे, एक नहीं गुरु साहब कह रहे। जे गावे दा अर्थ यही हुंदा ते इसे पदे विच पौड़ी च पातशाह सानू गावे को विद्या, विद्या नू गाई दा किवें, विद्या नू एकेडमिक एजुकेशन नू स्टडी करना हुंदा, गावे को विद्या, विद्या नू समझना अध्ययन करना, लिखिया गावे तो गावे दा भाव समझना अध्ययन करना जानना बुझना भी है। हुण आने गावे को तान, जिन्नी तू जिन्ना तू गहरा सोच सकता है, जिन्ना गहरा तू जा सकता है, जिन्ना होवे किसे तान उन्ना तेनो इहदे चों हीरे जवाहरात उन्ने रतन कट्ठे कर सकता। गावे को तान, जिन्ना तू गहरा सोच सकता है गहरा जा सकता है, गावे को तान होवे किसे तान। गावे को दात जाने निशान, कोई उसकी दात नु ही उसकी निशानी समझते ने, लिखिया गावे है बात समझण दी है, गावे को विद्या। विखम विचार ओखे ओखे विचारां नु तू हल कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, किवें गावे है। पंजाबी वाला हिंदी वाला गावे नहीं, गुरबाणी वाला गावे।

एक शब्द होर, असी सुनना नो समय दे आ, लिसनिंग भी सुन ली गल सुन ली। गुरबाणी दा सुने है वो है जो सेवे है, वो है जो गुरमुख है, वो है जो गावे है। ताई आंदा गावी है सुनी है इको तो किछ, क्योंकि दोनों का इको राह है। गा के सुने नहीं, गावी है सुनी है, मन रखी है पाओ बात मानी है, बात विचार पद्धर पे हो रहा है सारा कुछ। वो जो विगास विच है वो अपने भगतां नूं, भगत ता है गुर सेवा, सेव के भगत बनना है, जान के बुझ के भगत बनना है। गुर सेवा ते भगत कमाई साड़ी भगती ए है, गुरमत दी भगती ए है। जे भगत बनते हाँ ता फिर मन विच सब तो वड्डा डर की होंदा है, सब तो वड्डा डर मौत दा डर है, पता नहीं की बनना है। ते जे असी गुरु दे भाणे विच वर्त विचर रहे हाँ ता फिर कादा डर, जिसका साहिब डाडा है सानू किदा डर है, क्योंकि असी इत्थे विचरदे आ इत्थे असी ओ कीता है जो सानू गुरबाणी कहिंदी है। फिर असी विगसदे आ, फिर भगत जन खेड़े जा, नानक भगता सदा विगास। हे मेरे मन, जे मैं किते भगती वाले राह ते पै जा, गुर सेवा दे राह ते पै जा, फिर मेरा मन विगास विच है।

उत्पत्ति का कारण मायावी प्रभाव हैं। सुने ऐसा पता कि ईसर वर्मा इंद सानू सुने पता लग जाता है कि जड़ा सुभा है एदे विच मिठास एदे विच निम्रता मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी संभल तकी जी कदे ना बोले कोड़ा मुख सलाहण मंदा मनुख भी क्यों किवें सुने है। जोगी की करते ने तना दी की खेड है तन दे अंदर की चल रहा है जोग दी जुगत की है मुंदा संतोख सरम पचोली ध्यान की करे किंथा काल कुआरी का है जुगत डंडा प्रति कितों पता लग गया सुने सुने जोग जुगत तन भेद शास्त्रां सिमृतियां वेदां विच की लिखा है सिमर

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाये वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक कलई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। हरजन हर गोविंद नू सिमराउ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना उन दया वे ताई सब थाई होए सहाय। दसवें बादशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसवें बादशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरके। बलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्ना नाम जपया वंड के छकया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके। बलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए सिखी सिदक केसां स्वासां संग निभाई तना दी कमाई दा ध्यान तरके। बलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके। बलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दे मान सतगुरु नताणियां दे तान नियोटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ अरदास बेनती है। आप जी दियां महान बख्शिशां रंतां दा सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां होईयां बाणी पढ़द्या विचारद्या अनेक भुलां हो गईयां होणगियां पग जान के खिमा करनी अगों वास्ते समत बख्शना अमृतमई बाणी दा पहाओ दर आईयां संगतां दे हिरदयां च वसावना सरबत दियां तिल फुल पीटावां दर प्रवान करनियां दरों करों अमृत वेले दा जागरना नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान सरबत दी कारज रास करने शुभ मनोकामना संपूर्ण करनियां पावन दरबार की हाजरी भरदियां गुरसिख परिवारां वल्लों अरदासां बेनतियां ने दर करदे सेवक अविताज सिंह की तंदुरुस्ती चढ़दी कला वास्ते परिवार वल्लों अरदास बेनती है। सतगुरु जी रहमत करनी शीश दे रहमतां प्रयात रखणा दे अरोगता की दात बख्शिश करनी लखदीप सिंह अते कोमलप्रीत वल्लों अपने बेटे जोहन की तंदुरुस्ती चढ़दी कला अते उच्च विद्या की अरदास बेनती है। सतगुरु जी रहमत करनी बच्चे दे सिर ते रहमतां प्रयात रखना चढ़दियां कलां दी दात बख्श के कृतार्थ करना अंग संग सहाई होना दिलप्रीत सिंह दे कारजां दी सफलता लई अरदास बेनती है। सतगुरु जी मेहर करनी सेवकां दे कारज रास करने अंग संग सहाई होना बख्शे हुए खजानिया विचों समूह संगतां वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग दर ते हाजर है प्रवान होए परवान होया प्रसाद सरबत साध संगत च वरताउण दी आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो
ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਏ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ

हर पाणा गुरु पाया मेरा हर प्रभ करे सबास जियो भगत सतगुरु पुरख सोए जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजे वाजे।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास राम दास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना दया वे ताई सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान तरक। बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालिया मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई तेग बाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां की कमाई का ध्यान तरक। बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्मे शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े तन आरियां नाल चरवाए सिखी सदक किसां श्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरक। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरक। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रहा है देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाख दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी मान सतगुरु नताणियां दी तान नियोटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। अरदास बेनती है आप जी दे अटल हुक्मां दी तावील करदिआं दर करदे सरदार मोहन सिंह जी जिहा चिरी लिखिआ तिहा हुकम पमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाहिदे मां वाकां सार सेवकां नूं आप जी ने जितनी आरजा बख्शिश कीती सी संसार की यात्रा संपूर्ण करदिआं होइआं परलोक प्याना कर गए सन उन्हां दी रूह दी शांति लई समूह परिवार वल्लों आप जी दे चरणां दा ओट आसरा लै के सहज पाठ आरंभ होए सन। आप दीआं मेहरां सदका संपूर्णतावां होईआं उपरंत दीवान सजे अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन होए बाणी पढ़दियां होईआं फुल्लां दी खिमा बख्शनी अगों वास्ते समत बख्शना अमृतमई बाणी दा भाव विछड़ी आत्मा नूं परलोक विच सहाय करना सदीवी काल वास्ते अपने चरणा कमलां च निवास बख्शना वागुण दे गेड़ तों रहत करना पिछे सरबत परिवार साख संबंधियां बच्चों के सिर ते रहमतां भरिया हथ रखना भाणा मनण का बल बख्शिश करना परिवारां विच सुख शांतियां प्रदान करनियां दर आईआं संगतां दीआं हाजरियां दर प्रवान करनियां दरों करो नाम दान सिखी सदक भरोसे दी दात बख्श के कृतार्थ करना बख्शे हुए खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देख दर ते हाजर है प्रवान होया प्रसाद सरबत साध संगत च वरताउण दी आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श के सेवकां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मिलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता आवे नानक राम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की दबे चलायो पंथ सब सिखन को।